उधन तो बिडावी तेहनी मीनी का उन को आसाना उन ओधे अखलगियानो कस्से गाथा आती अखलेगा अबू उन ओधे मालो रगा द कस्से उन धई तो क्या उनु गाती नाती अखलेगा उनु तक उरावी कदाय कब की के तक उरावी कहीस कब की के कस्सा गाथा आती बने है आन बे तुनाती दाय उन इब्ने आदम अल्लाह दाय करमी दाई थाती विदिए उम्बरो उम्बरो सूखती हुआ तितु सूगा नहीं हुआ बता दाई की के ओ दई दिस गो देना तू न उम्बा तू कित अरे हो आओ मिताल गाल दोन हदी दिया ने अरे रे व मत अमी ईस्तन इही न को ईद आपस ए मारी तो तमे तक वक उदारी हसमिया ऊता गुदारी हसमिया मल्ला अंगुल हो क्या है अको आंदा ईस्तन मत अमी इफाइद इफाइद नो मत अमी भी ऊतक अल्लाह हम ऊतक बिन बरु आया इता को या को ना वली किया है अबुनाना ओरे मा हो के दे एनो कुर्सी बिंदे को दास यानो आंदा इमानी है ने इमानी एनो अन आंदा उंबरिय की अंगुले ए फीद ने एदे इन एदी ओब आंदा बस सकीन ए गमनो ए फायदे अम बराक ना उन अने अनि ते फायद ने उन अने इन अंगुल है गी ज्ञान उगिकते सोयो कनन दे दे उन अने ना का नफराए भी सगे मीना रब्बता दर दरप कनी करेफे दरप उदरप नीकरफ अको अनुसेनो सगे मीनी कामी द एह तक मिरबेत आ तक थारो रितफाबू आन ऊतक निशिबो ऊतक ऊकना शलिक तक शलिक बोई अकै रेने अफलम बडट उन कामियो दर तिलगाब ओ तक इब्ने फायद दे ने फायद इत मरी रे ओ ओ मा ओ ओ ओंबय होक ओंबय होक ने दे ने दियो मरी ओन सकिया हयातो रियानो मरी ओन ओ काम सकिया इक्तिमोन ओदोर यकिए गाल इन यरवेसोन या ओरे उकामी तुका है दे इदियो बेन ओदोर अने हो अफाई दे दे अउते दे अफाई दे बरू हन ईशवे वो तुका हो के दियो या ना सना ना नाती तुकस्ते ने इदे इदियो बेन हेने ओ काम होई से गया भले रो हगलात ने दे आओ ओ काम अना अना सना ना थी तोकना इदियो ने ना थी तोकना इदियो नो अब अद ना थी बाद आया था बस ओ काम हो तो तकत हुआ है तिशीश वो बाय अतक तंगोते है एक ने दे निदियो अना सना उशने इदे इदियो दाउल काब ने कहते आ भले तेमसी हो बेड़ा हुए था दिन एक ने दी तुम्हारी हिरेर ने मरी हिरेर ना नो बेन ओदोर नेहगिल बिंदिये तो ना एकानो तो तकत्ती हो दाना कमी है ये कक सकना इदे इदियो तो तकत्ती अक्ते बोलो ना अंदा मसी यूशोग ईद ना ते देन